ठाकुर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मरगाई पंक ना पीजै, चंदन वास पुयंगम वेड़ी, किव मिलिए चंदन लीजै, काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै, आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करीजै, महा उगर पाप साकत लर कीने, मिल साधु लूकी दीजै, साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै, परस न परस भय साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै, साकत सूत बहु गुर जी भरिया, क्यों कर तान तनीजै, तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते लीजै, मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाऊ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलावहु जग थमन को थम दी जय। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रली जय। अति उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परी जय। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मली जय। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दी जय। साधु साध साध मन प्रीतम।

अभाग अभाग है जिनके तिन साधु धूर ना पीजै तिन्ना तिसना जलत जलत नहीं बूझ दंड धर्म राय का दीजै सब तीर्थ वर्त जग पुन किए हिवै गाल गाल तन सीजै अतुला तोल राम नाम है गुरमत को पुजै ना तोल तलीजै तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जान है जन नानक सरण परिजै तू जल निध मीन हम तेरे कर कृपा संग रखीजै कल्याण महला चौथा रामा राम रामो पूज करीजै मन तन अर्प धरो सब आगै रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै रहाउ ब्रह्म नाम गुण साखत रोवर नित चुन चुन पूज करीजै आत्म देओ देओ है आत्म रस लागै पूज करीजै विवेक बुद्ध सब जग मह निर्मल विचर विचर रस पीजै।

एक वार। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कही है तरिय साचा होई।

धर्म नाही नाही सोच माला सेव जोत कन्नो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जाकै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जाकै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला तांका कहे आधार परवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कही है सर्बे रहे आसमाय जो किछ वरतै सब तेरी रजाय रहाउ प्रगटी जोत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

जाय। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए गुरु उपदेश जवाहर मान।

रावण पशु परे तो देव करै रत्ता सच नाम तल हील सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौरै तास चरण निव रही है गुरमुख जी प्राण उपजह गुरमुख शिव घर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

पंच तस्कर तावत राखी चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान। खिमा धीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखार।

जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

दुख संभाले सुख दुख पुरब कमाई कर्महीन सच भीख्या मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करूं मूर्ख जग कहिया।

कहावै सोए। प्रभाती महला पहला खाया मैल बधाया पेंद घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबा दे मारी है छूटस साच नाय। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

रस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु सुमनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहे आ प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावह चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहा ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराई बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मिलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डर पै गुरमुख हृदय मोरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवै साध मना रहाउ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है तीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावै निरालंब निरहार निह केवल निरपहु ताड़ी लावै शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावै बाहर जातो ठाक रहावै गुरमुख सहज समावै सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

सच पाई। प्रभाती महला तीजा, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन तू राखन जोग। तुद जेवड़ मैं अवर ना सूजै, ना को हुआ ना होग। हर जियो सदा तेरी सरनाई, ज्यों पावै त्यों

माहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी परान गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाऊ मूल पछाणन तिन निज कर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल परगासिया हम मैं दुर्मत खोई सब नाम है एको सच वरतै बिरला बूझै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करी ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नो रिजक दिया कली काल मह रविया राम घट घट पूर रहया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाउ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग घट घट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्ना हिरदय प्रगटिया जो गुर सरनाई भज पया इंद्री पंच पंचे वासियाण खिमा संतोख गुरमत पावे सो धन धन।

कहया ना चित धरै कर आचार बो संपो संचय जो किछ करै सो नरक परै एको शब्द एको प्रभु वरतै सब एकसते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सहलाए पूरा भाग होवे मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाउ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदरों

आधार आपे देवे सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाना सोई भगत सुगड़ सुजाना नानक तिस कै सद कुरबाना प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत लिव

हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर किरपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सवरैन समाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झार है हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल। खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुब दे काढ ले हो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीख। गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय नाम ना वस्यो तिन सब कारज फीक। जैसे शिंगार करे देह मनुख नाम बिना नकटे नक कीक। घट घट रमैया रमत राम राय सब वरतै सब महीक। जन नानक को हर कृपा तारी गुर बचन त्यायो करी मीक। प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुखार हर नाम हम कहे। पतत पावन हर नाम त्यायो सब किल विख पाप लहे। जप मान राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ काया नगर नगर हर बस्यो। मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो। कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उदयानी ते साकत मूड मोहे। ज्यो मृग नाभ बसे बास बसना भ्रम भ्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देव हो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर धरियो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के

सेवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद। आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहि। तिस गुर की हम

ऐ बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइए लाहा खाट हुइए तनवंता अपना प्रभु ते आइए आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान।

सदा सदा प्रभु जी कै संग उत्तरी मैल नाम कै रंग चरण कमल सिंह लागो प्यार बिनसे काम क्रोध अहंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर

गुरपूरा पाइए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाऊ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर

अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवां गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा

साध संग हुआ परगास, चरण कमल मन माहि निवास, जिन किया तिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसह

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल सात शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक भय निहाल प्रभाती महला पंजवा।

संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण पई आस। सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुर नानक टूठे। प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाऊ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के भरम। साध संगत हर मिलै।

इस लोभ मोह बिन सजाए अहंताप रहाउ। आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कछु ना जानै।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी,

मन वसाय विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाए कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाना बोली भाई सुपाई जो किच वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियों अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत खो।

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास, गुरमुख विरला चीने कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई, प्रम प्रम डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी, एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटे नाम संभाल, आपे सदे टिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोई, बिन गुर सूजी किसे ना होई, आपे करै करावे सोई, झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे, एहो मन

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तुर बख्श लए गुरपुरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हऊ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, किपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई है,

कौन, त्रै मिल जगते उपाया, ऐसा बल चल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया, ऐसे जन विरले जागे अंदर, परख

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया।

जन निर्मल हर कै नाम समाई हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार हर मंदिर में मन लोहट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह हउ मैं मैल उतार सदा जागह कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ह मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आई जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाई हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हउ मैं विच जागरण ना होवई हर

के कीड़े विस्ताराते, मर जम्मह होहे खुआर। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटोह बल जाऊं, इनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाऊं। पूरा भाग गुर पाई उपाय कितै ना पाया जाय, सतगुर ते सहज उपजे हउ मैं शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग, नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता, चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

बहुत कर गाली, हम गुर राख लिए कृपाली, काम क्रोध से ठाट न बनिया, गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया, जह देखो तह महा चंडाल, राख लिए अपने गुर गोपाल, दस नारी मैं करी दोहागन, गुर कहया ए रसह बिखागन, इन संबंधी रसातल जाई, हम गुर राखे हर लिव लाई, अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी, गुर कहया इह मूरख होड़ी, एह नी कार कर कहीं ना पाई, हम गुर राख लिए लिव लाई, इन लोगन स्यो हम भये बैराई, एक ग्रह मह दोए ना खटाई, आए प्रभ पह अंचर लाग, करहु तपावस प्रभ सरबाग, प्रभ

का सोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुने आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडे लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ इशनान करीजा, चरण कमल निमख हृदय तारी, गोविंद जपत सब कार्य सारी, उच्चे ते उच्चा प्रवथान, हर जन लावह सहज ध्यान।

माहे निदाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

कहिए सोई। अलह अलख न जाई लखिया, गुर गुर दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती वेद कतेब कहो मत झूठे।

तेरे मन का भरम ना जाई रहाओ। पकर जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया ज्योत स्वरूप अनाहत लागी। कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया। जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया। कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई। सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई। ठाडा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बानी।

आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ता की अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परमलाद काष्ट चंदन पै

आपै, जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ एहो जियो चितवै सो लहै, अमर हुए सद आखुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन चंदन मस्तक पाती, हृदय अंतर कर तल काती। ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दिष्ट रता निस्बादं। रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं, द्वे धोती कर्म मुख खीरं। हृदय छुरी संध्यानी, पर दर्भ हिरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं, निस जागस भगत परवेशं। पग नाचस चित अकर्मं, ए लंपट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कारी उजल तिलक कपाला। हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं, रे लंपट कृष्ण अपाखं।

सरन लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाउ सुपने ज्यो तन पछान काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जय है तेरो गात छिन।

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाऊ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक।

पुरुख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंदव कतंच मोह कटंब्यते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तनह किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुतह त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमन है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपं असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

संत बदक परिहारेण लख्या आवदै अहो जस्यै रखेण गोपालै नानक रोम ना छेदयति बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सू

चतुर दिशा है, बिकमथान बसंती उच्च है, नह सिमरंत मरणं कदांच है, होवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कीति सास अकरखते, शब्दं रतं हितं मया, कीर्तं कली कर्म कृत्व, मिटंत तत्रागत परम मोहं, भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं, दृष्ट त्वं अमोग दर्शनं, बसंत साध रसना, हर हर हर हरि नानक, प्रियं जाप जपना, कटंत रूपं कटंत दीपं, कटंत रावसस्यर नक्षत्र गगनं, कटंत वसुदा गिरतर से खंडं, कटंत ललना सुत प्रात हीतं, कटंत कन...

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं हर।

वर्तंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुधा कुशल थान बसंतरिक्षियं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञान रहंत जन्म हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीपिया वैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है।

वर्तन्त सुख आनंद प्रसाद है, सिमरंत नानक हर हर हरि, अनित्य है रचना निर्मोहते, दान परापूर्वेण पूचलते महीपते, विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते, वृथा अनुग्रहंग बिंद है, जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यति सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नाच विद्या निदान निगमं नाच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नाच राग रतन

जीहि पणिज्यो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी गुरमंत्रहीन से जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुल खल है चरनार बिंद भजन हृदयंग नाम धारण है कीर्तन साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूत नह नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राज नह नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग

प्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टा सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं

कलं सिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं किलबिखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं मृत्यु जन्म परमंत नरक है अनक अपावंगना सिद्ध्यति निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभु पूर्ण है निराश आस करन सगल अर्थ आलिय गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियण प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करन हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है तब पै विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अधमं नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं साज समझ्य त्राहे त्राहे शरण स्वामी।

त्रिडंत अनक माया बस्तीर नह आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

पवित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है। भगत वछल अनाथ नाथी।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धेहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनं जथा विपरा अमरहीनं जथा

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियु शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुद असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरण त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं।

वाणी पर हार नह, वचन साध सुख पंथा, लहंता बड कर्मणह, रहंता जन्म मरणेन, रमण नानक हर कीर्तन है, पत्थर पुर जीण चढ़ियं, नह जड़ियं पेड़ संपता, नाम बिहून बिखमता, नानक बहंत जोन बासुरो रैणी, पावनी साध संगेन, लभंतंग बड भागन है, हर नाम गुण रमणं, नानक संसार सागर नह व्यापन है।

गोविंद रमण साध संग मह सुमंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानं नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब्धिहं बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमित्तो विदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमित्तो सोई नानक सखा जी संग कित्तो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत है हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण है मरणंग विसरणंग गोविंद है जीवनंग हर नाम त्यावण है लभणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपारण संतं नानक लब्ध कर्मण है जात काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है तात लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म ना लभ्यति वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बडभागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धिहं साध संगेन नानक बडभागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है।

कलम अगम मस्तक लेखावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूप पावती उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागने तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागने हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया आसा इती आस के आस पुराइया सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्त।

वह सच तना सुपने ऊ भी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

की दम के हो होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जानी मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जार।

आहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहु जाहे। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल। नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार। मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग। प्रगट भयो

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार, कबीर माया डोलनी पवन वह हेवतार, जिन बुलोया

एक हजार हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्भ ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर।

अजो सोना उस मंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग। आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाहेंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो अपने घर लावे आग,

ऐ कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बनज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

याग हिंथा जल कोयला पई तागे आंच न लाग कबीर खिंथा जल कोयला पई खापर फूटम फूट जोगी बपड़ा खेलो आसन रही बेपूत कबीर थोड़ा जल माछुली चीवर में ले ओ जाल ए टोग नैना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

वैष्णव की कुकर पली साकत की बुरी माय। ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाय। कबीर हर

शरीर बिन हर भगत ना मुक्त होए यूं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर।

कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय। पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं

सती पकारै चेह चढ़ी, सुनो हो वीर मसान। लोग सबाया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड उड दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले,

मुए चार पुरख दोए नार, कबीर देख देख जग ढूंढिया कहू ना पाया ठोर, जिन हर का नाम ना चेतेऊ

जिन हर का नाम ना चेते हो, बाद है जन्मे आए, कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास, नरक पर है ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते

ज्यों की भूसी खाओ हुन हार सो होए है साकत संग ना जाओ कबीर संगत साधकी दिन दिन दूना हेत साकत कारी कांबरी तोए हुए ना सेता।

आय सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाय कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राखे नार गद ही हुए कह अवतर पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांदल कंध चढ़ाए।

ज्योत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल।

बांधियो जेह जेवरी तेह मत बंधो कबीर जह आता लून ज्यो सोन समान शरीर कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो।

रहो हर खगुन गाय। कबीर चुगै चितारै पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख।

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रह नायर बिछोरिया रहो रे संख मचूर देवल देवल ताहड़ी।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा धाम कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाम कबीर कौडी कौडी जोर कै।

होए। ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए, ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंतर ना पुजै

पाछ परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे उ कबीर कबीर दुनिया के धोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किस काल।

असंत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जान नाही कोई कै जान आपन तनी कै दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पान।

के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बचार कह संत।

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत

हलाल दफ्तर लेखा मांगिए तब हुई गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मह अमृत लोन हीरा रोटी कारने गला कता वह कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप हरख सोग दाजे नहीं तब हरे आप है आप। कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबे कह सोई कौतक हार। कबीर राम राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी हुए गई पाठशा।

है जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है।

कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परा पूर्व ली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ धाए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए। महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बैसह गाए धरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाए। महला पंजवां कबीर चावल कारनी तुख को मोहली लाए संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राय। नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम ना लावो चीत।

योगन कर काहे की कुसलात हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बरजै लोगे अजान ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी परान कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक।

रखे ताराम पाज नाही ता बिरठी बात कबीर केसो केसो कुकिया ना सोइए आसार रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मय मंत अंकस ज्ञान रत्न है खेवत

तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद, कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी, बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए, ठाक ना अवकट काट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत नाही संत। कह नामा क्यों पाई, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। हे नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर।

किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे परिदा इनी निकी जंगी है फल डूंगर पवे ओम अज परिदै कूजड़ा सह कोहां थे ओम परिदा राती वड्डियां धुख धुख उठन पास एक तिना दा जीविया जिन्ना वडाणी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्तां आड़ियां हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़ै दाख बजौरियां।

नाती तोती संभही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत न जाए फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजै सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू के रे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो नदोषा मारिया हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवे सानू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही।

दास परिदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै घर नाथी अज परिदा पन्नी कड़ी समन्नवी।

पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवै सो सिर की जय काए कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदै थाए फरीदा किथे तेंडे मापिया जिन्नी तू जने ओहे तैं पासों ओ लद गए तू अजय ना पतीण ओहे फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही महला पंजवां फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे मंदा किसनो आखिए जां तिस बिन कोई नाहे फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए फरीदा पंख परहोनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यो चलन का कर साज फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाऊ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन कुआऊ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़के देखिया तां घर करे हा अग महला पंजवां फरीदा भूम रंगावली मांज वसूला बाग जो जल पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवां फरीदा उमर सुहावड़ी

भग बप्पड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागहु हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वासिया भी कंत मत हुंदी होए आना तान हुंदे होए नताना अण हुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

आप ही तारन धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सत बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक है सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार।

हर अकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिय अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख

मन भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसे हो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप

पव जल तरना, बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे, बले ओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन मह।

मद माता विचरत बिकल बढ़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हसानी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु।

ज्ञान हे भगवंत कृपा करता रहू प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर।

आस तुझह समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परियो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परियो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो जम दूतन दन मृत मरियो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरियो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करियो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जरियो ना जात रहियो जन तूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाट है कर थटुआ सवैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा विख्याता।

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल

परमेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदादिक मन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल

खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिहवा रस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निर

पहुंचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायु गुण गावह पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारिय ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाणियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायु मां धाता गुण रवै जेन चक्रवै कहायु गुण गावै बल राऊ।

सप्त दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन

खवै कस बिमल विचार है एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परस्यो कल समुल वै।

सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै हठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

सारी, जिन भगत भवजन तारी, सिमरहो सोई नाम प्रधान, तित नाम रसक नानक लहना, थपियो जीन सर्ब सिधि, कव जन कल सुबुद्धि, कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया, कीर्त रव किरण प्रगट संसार है, साख तरोवर मबल सरा, उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम, जय जय कार्य पंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदायु, उल्ट गंग पश्चिम धरिया, सोई नाम अशल भगत है भव तारन, अमरदास गुर कौ फुरिया, सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर, साधक सिद्ध समाध हरा, सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल, नारदाद प्रहलाद वरा, ससियर अरसूर नाम उलास है, सैल लोजिन उदरिया, सोई नाम अशल भगत है भव तारन, अमरदास गुर कौ फुरिया, सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन, शिव सनकाज समुद्धरिया, चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती, अमरीक भवजन तरिया।

नाम नावन नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभूह समुद्धरे पायो नाम निवास सक्यात जन्म कल उच्चरै गुर परसेउ अमर प्रगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख मुख।

मुखों भगत उच्चरै अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रै।

लख है एक एक कर वरनियो गुरु अमरदास जालप भणे तू एक लोड़ है एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लभे गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रहु। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहु। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण बखाणो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल अधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवर्यु। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो। जह कह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो। जेहे सिख है संग्रहयो तत हर चरण मलायो। नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहने संग हो। गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो। जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है। सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है। भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है। गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार। नानक कुल निम्मल अवतार।

शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै दीश हुक्म।

सनाह ज्ञान है आसन चढ़ियो ध्रम तनक कर गहियो भगत सील है सर लड़ियो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्डियो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत।

इव जोधकार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पाल।

पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अवनासी अवगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमह नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भउ भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागता।

प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटे सतगुर शब्द अथाह हमें तारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु राम।

है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर बास।

गुर पायो तिन सकी अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणी एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान

पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवे जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

निरंकार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कमन उपमा देओ कमन सेवा सरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर हुन मन बच क्रम जान अनत।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

क्या कीजै, जान गुरु होए वल, ज्ञान अर ध्यान अनन पर। जान गुरु होए वल, शब्द साखी सो सच है घर, जो गुरु गुरु अहनस जपै।

गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच बीचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन, अगन कट है सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह, जिन गुरु ना देखो ना हो कियो, ते अकियत संसार में, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे, हुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान।

जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो कुत्ती जो प्यास पियूस पिवन की वंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

शब्द हर हर जपै नाम नाव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओह कुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

जी धारहु मानस जन्म दे निस्तारहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौहो जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंद है जो चरण सरण सुख पाव है परमानंद गुरमुख कहियं प्रताख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परनं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बेचित चाऊ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीता है जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मुन बंश है जाकी सरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जा।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है इशनान इशनान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

देख रूप अत अनूप मोह महामग पहे किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्य ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सर्वर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आ

लाल, मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरियो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आद

निदान सच जान मंत्र एह निस बासर हुए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तोह हम मैं का फंद काट।

गुरु सम्राथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

कर दे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबहु का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास को।

जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो ही हो।

तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तू दर्स परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाई सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन

पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानियो तीनी भगत प्रेम लिवलाई तांते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत की नीम रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी।

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

जोड कार सुजस बखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बडभागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरडायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आली।

नव निध नान खुटे गुरु रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताने हो गुर अर्जन कल उचरे तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु मानियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर।

अपार सार सुपार परायो गुरगम प्रमाण अजर जरियो सार संतोख समायो गुर अर्जन कल उचर तै सहज जोग निज पायो अमयो रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द हौ मैं निवारियो पंचाहर निदलियो सुन सहज निज घर सहारियो हर नाम लाग जग उधरियो सतगुर हृदय बसायो गुर अर्जन कल उचरे तै जन कह कल सुदी पायो सोरठे गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थ उचाले नाही नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो।

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज।

देखियत ताम सियो अपार परंपर पुरख सियो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और है काम सियो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम सियो अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महा तम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर।

अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार।

गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कह श्री गुरमोयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर संघासन दियो श्री गुर तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम।

किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार

बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल्ले उठी चल्ले साध नाही अवेही गल्ले राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार सीता लै गया दह सिरू

जो लेवै सो देवै नाही खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा जै सेती मेरा संग जित डिठै तन पर फुड़ै चढ़ै चवगण वन रज ना कोई जीव्या पहुंच ना चलिया कोय ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होय सरफै सरफै सदा सदा एवं गई विहाय नानक किसनो।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाणै जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उर धार एक तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती भउ मन पवै ता हर रस लगै प्यार नाउ मिलै तुर लिखिया।

मनमुख अंदाल हुए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

आई मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाय बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाई नाओ वसै मन आई नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की राखदा। हौ सद बनिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल होया। बिख हऊ मैं गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले। हर दरगाह सुबा पाए, जन नानक सदा कुर्बान। तिन जो चल है सतगुर पाए, सतगुर पुरख निर्वैर है। नित हिरदय हर लिब लाए।

दूत ज्यो पिता नाम तिस जाए हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआए हर गुरमुख किरपा धारियन जन विछुड़े आप मलाए जन नानक तिस बलिहार नै जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नावे जमपुर जाहे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछताहे चिंता तावत रह गए ता मन भया आनंद गुर प्रसादी बुझी है सा तन सुती निचिंद जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना भेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार सतगुर का

बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमान दे अंत न पारावार। हर कृपा कर।

नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण दिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया।

बहु चित्तवदी बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

पाए। सत संगत हर मेल प्रभ, हर नाम वसै मन आए। जन्म मरण की मल उत्तर, जन नानक हर गुण गाए।

हर भावे बख्श मलाई मन आवण जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मुहि पलीटिया अंतर अज्ञान गुबार अब नर सुता जागिया सिर डंड लगा बहु भार गुरमुखां करां उपर हर चीतिया।

गुर प्रसादी हर रस त्रापै, हर दरगह गुर शब्द सिंघापै, बिन शब्द मुआ है सब कोई, मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवहै, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाई, बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगड़ै लुजै गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किन विख पाप सब कटी है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

तिसका क्या सलाही है भाई, दर्शन को बल जाय। सतगुर विच वड्डियां वड्याईयां भाई, कर्म मिले ता पाई। एक हुक्म मन ना जाननी भाई, दूजे भाए फराय। संगत ढोई ना मिले भाई, बैसन मिले ना खाऊ। नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई, जिन्ना तुरे कमाया नाऊ। तिन विट हो हों वारिया भाई, तिन को सद बलिहार जाऊ। से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, अनदिन सेवन गुर अपना अनदिर अनदिर हन। नानक से मुह सोहणे सच्चै दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां, सच बोल है सच कमाहे। सच्चा शब्द मन बसिया, सतगुर माहे समाहे। सच्ची राशि सच धन, उत्तम पदवी पाहे। सच सुन है सच मन लैन, सच्ची कार कमाहे। सच्ची दरगाह बैसना, सच्चे माहे समाहे। नानक बिन सतगुर सच ना पाईऐ, मन मुख भूले जाहे। बाबीहा प्रियो प्रियो करे, जल निद प्रेम प्यार। गुर मिले शीतल जल पाया, सब दुख निवारण हार। तिस चुकै सहज उपजै, चुकै कूक पुकार। नानक गुरमुख

तन मन सुख होए जा तत बूंद मुहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गाव हुकामणी सच्चै शब्द समाए। भय का सहज श्रृंगार करहु सच।

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसके पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचे अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाय हर गुठा मन तन सब परफड़ सब जग हरियावल होय शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होय नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोय नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोय हर उठे मन तन परफड़े सब जग हरिया होय वडड़े चाल चाल चलंबले

पाइए सतगुर कै उपदेश चारी कुंडा जे भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिखि उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै दे हो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाई अन दिन रह आनंद नानक सहज समाई है।

कर्म कर नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

तिनके मुख सद उजले इत सच्चै दरबार तिन बहंदिया उठदिया कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले।

आए मानव को हुक्म ना बुझे बपड़ी नेता हूं मैं कर्म कमाए वर्त नियम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरोह कुशुद्ध माया मोहे भेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाय तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करता है पूर्व लिखिया कमाए गुरमक प्रतीत पई मन मानिया अन दिन सेवा करत समाए अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देख है सब आए मनिए सतगुर परम बीचारी जित मिले तिसना भुख सब जाए हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मलाए नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरनी लगे आए जिन पिरिया सोने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग नाद।

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो पौजल जग

पार लंघाए, गुर सिखा की हर धूड देह, हम पापी पी गत पाहे, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बदारियन, हर दरगाह ले छडाए, गुर सिखा नो साबास है, हर तुठा मेल मिलाए, गुर पूरे हर नाम दड़ाया।

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर पज मना जेह बिद जल कौ मीन दिखियन स्यों काहे रचियो निमुख न होए उदास कहो नानक पज हर मना पर ना जम की फास तरनापो यों ही गयो लियो।

निस दिन जो नानक भजे सफल होहे ते काम। जिह बागुन गोबिंद भजहो करन सुनो।

नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हरे

कहो नानक हर भज माना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मित्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज माना निरपै पावह बास जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो ना मन को मान दुर्मत स्यों।

जो उपज्यो सो बिनस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे

मुद्दा अष्ट पुत्र में कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी, कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप, कामोदी औगुजरी।

असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मान रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह।

सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठगे जाहे, जिन कै राम वसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सच्चा मन सोए।

ज्ञान सतगुर सतपुरखा बिना करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई तर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मुख और राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रह रास रखाओ। हर जन केवड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तब तस है मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर्ष नाम न पाया ते पाहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सत संगत जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्त है उद्यम। जा आहार हर जियो परया।

तिनका पौ सबगवासी, जिन सेवा मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर न कोई,

तोदे आपे सिरठ सब उपाई जी, तोदे आपे सिरठ सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सत्यार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लद्दा मन मुकवाया, तू आप छोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ तब तुझ ही माघे, तुझ बिन दूजा कोई नाघे। जी जनसब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है तो ही जन जाने, हार गुण सदगी आख वखाने।

आओ सहस्ताव नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामय जोत जोत है सोए हिद चानन सामय चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत भावे सु आरती होए हर चरण कामन मकरंद लोभत मनो आनंद आई।

मद देख पूला विसर तेरा चेतना आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणंजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौ।

बल माटी पया मन माया मोहे मनूर औगुण फिर लागू पये पूर्व जावे तूर बिन शब्दे परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझया मर जन्म आवे जाए राव तन सूचा सु आखिए जिसमें साचा नाव पये सच राती देहोरी जेवा सच सुवाओ सच्ची नजर निहालिए बौड़ न पावे ताओ साचे ते पवना भया पवने ते जल होए जलते ते पवन साजया घड़ घड़ जोत समोए निर्मल मैला नाथिए सब दरते पद होए यो मन साज संतोखिया नजर करे तसमाखे पंच भूत सज पैरते जोत सची मन माखे नानक अवगुण विसरे गुर राखे पद तागे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार एक आवे एक जावही पूर परे अहंकार मन हड मत्ती बूढ़ीए गुरमुख सच सो तार गुरबिन क्यों तरिये सुख होए ज्यों भावे त्यों राख तू मैं अवरना दूजा कोए रहाओ आगे देखो डाओ जले पाछे हरेओ अंगूर जिसते उपजे तिसते बिनसे घड़ घड़ सच भरपूर आपे मेल मिलावही साचे महल हदूर साहे साहे तुस्तमला कदे राम सारे ओ ज्यों ज्यों साहब मन से गुरमुख अमृत पेयो मन तन ते रातू तनी गर्भ निवार समेयो जिन ओ जगत ओ पाया तिर पवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार धड़ धड़ जोत निरंतरी बूझे गुरमत सार गुरमुख जिन नहीं जाने।

कीना सुने ही गोरिये आपन कन्नी सोए लगी आवे सौरे नितन पेया होए नानक सुती पेई जान वरती सन गुणा गवाई गंटड़ी अवगुण चली बन तिरी राग मखला पहला कर दूजा आपे रसिया आप रस आपे राम नहार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंगता मेरा साहेब रावरया पर पूर हराव आपे मा

हथ न आवई, अंत गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हरसे ती लिव लाए, देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, सेव पई तिनताए, हर गुण गावे हर निद पड़े, हर गुण गाए सुमाए, नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लिव लाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी एक मन नाम ते आया, गुरमती विचार, तिनके मुख सद उजले, तेत सच्चे दरबार, वे अमृत पीवे।

नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पिर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे, कहना किशु ना जावई।

अमृत सत्या नामह तैना कछु न जाय पीवत हू परवान पया पूरे शब्द समाय आपे देता पाई है होर करना किछु न जाय देवन वाले कह हाथ दात है गुरु द्वारे पाए जिहा की तोन तेहा होआ जेहे कर्म कमाए जात सत संजम नाम है विण नावे निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसे शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावे सोए श्री राग महला तीजा काया साधे उर्द तप करे विच्चों होमे ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कभी पाए।

अंतर तेरे हर बस पुर सेवा सो पाए। अरहाओ सच बाणी सच शब्द है जहाँ सच तरे प्यार। हर का नाम मन बस होम में क्रोध निवार। मन निर्मल नाम त्याई है ता पाए मोख द्वार। होम में विच जग बिरसदा मर जमे आवे जाए। मन मु शब्द ना जाननी जसन पद गवाए। गुर सेवा ना पाई है सच्चे रहे सुमाए। शब्द मने गुर पाई है विचों आप गवाए। अनदन पगत करे सदा साचे की लिवलाए। नाम पदार्थ मन वसया नानक सह सुमाए। श्री राग महला तीजा जिन्नी पुरखी सदगुर ना सेवयो।

मंगत के संसार सच्चा शब्द न सेवयो अवकाश सुवारण हार मन मेरे सदा हर वेख हदूर जन्म मरण दुख पर हर शब्द रहा भरपूर अरहाओ सच सलाहन से सच्चे।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचो आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाईए सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत, हरहाओ मन की इच्छा पूरिया शब्द रहा भरपूर, पए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर, सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर, जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाय, सुन्ये कर का पौना ज्यो आया त्यों जाए, मानव जन्म बिरता गया क्या मोदे सी जाए, सब कुछ आपे आप है होमे विच कहन ना जाए, गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे विचों गवाए, सतगुर से मन अपना हों तिनके लागो पाए, नानक दर सच्चे सच्चे।

अमृत है, जिद पीते तिख जाए, यो मन साचा सच रता, सच्चे रहा सुमाए, आखण वेखण बोलना, सबदे रहा सुमाए, बाणी वजी चौजुगी, सचो सच सुनाए, होमे मेरा रह गया, सच्चे लया मिलाए, इनको मैल खदूर है, जो सच रहे लिवलाए, नदरी नाम ते आईये, विण कर्मा पाया ना जाए, पूरे भाग सत संगत लहे, सगुर पेटे जिसे आए, अनदिन ना मेरतया, दुख बिखिया बिच हो जाए, नानक शब्द मिलावड़ा, नामे नाम सुमाए, श्री राग महला तीजा, अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार, सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुण सार, दुबदा मैल चुकाइन, हर राख्या उर तार, सच्ची बाणी सचमान, सच्चे नाल प्यार, मन मेरे होमे मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना, शब्द स्वारण हार, हरहाओ सच्चे शब्द मन मोया, प्रव्यापे लय मिलाए, अनदिन नाम में रत्या, ज्योति ज्योत सुमाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा, बिन सदगुर बूझ न पाए, जिनको पूर्व लिखया, सदगुर पेट्या तिने आए, विण नावे सब डुमणी, दूजे पाए खुवाए, तिस बिन कड़ी ना जीमदी, दुखी रहन विखाए, परम पुलाना अंधला, फिर आवे जाए, नदर करे प्रवे अपनी, आपे लए मिलाए, सबके सुनदा वेखदा, क्यों मुकर पे आ जाए, पापो पाप कमाऊं दे, पापे पजे पचाए, तो प्रणदर न आवई, मन मुख बूझ न पाए, जिस वेखा ले सो ही वेख, नानक गुरमुख पाए, श्री राग महला तीजा, बिन गुर रोग न टुटई, होमे पीड़ न जाए, गुर प्रसादी

तास लहे महल हरहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैण न मिले हदूर मनमुख शब्द न जानी अवगुण सो प्रादूर जिन्नी सच पछाणिया सचरते परपूर गुरशब्दी मन बिद्या पर मिलया आप हदूर आपे रंगन रंगयोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग न उतरे जो सचरते लवलाए प्यारे कुंडा पव सके मनमुख बूझ न पाए जे सतगुर मिले सो मिले।

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सृट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा हलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब थी है, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर के शब्द पछाणिए, जहां आपे नदर करे, छे जन सब दे सोने, तिस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमति सच सलाना, जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़े आपे हुकम से, हुकमे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है, हौमे विचों कोय, सातन नावे बारी, अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच लगा, सच्चे नाय तृप्त होय, गुण विचारी गुण संग्रह, अवगुण कड्डात होय, आपे मेल मिलाएंदा, फिर वे छोड़ा ना होय, नानक गुरसाला ही अपना, जिद्दू पाई प्रसोय, श्री राग महला तीजा, सुन सुन काम घेलिए, क्या चले बाल उड़ाए, अपना फिर ना पछाण ही, क्या वो दे से जाए, जिन्नी सखी कंत पछाणिया, हो तिनके लागो पाए, तिन ही जैसी थी रहा, सत संगत मेल मलाए, मुंदे कूड़ मुठी कूड़ियार, फिर प्रस्ताता सोना, पाइये गुर विचार, अरहाओ मानमुख कंत ना पछाणई, तिनको रहन विखाए, गर्भ अटिया तृष्णा जले, दुख पावे दूजे पाए, सबदरतिया सुहागणी, तिन विचो हो में जाए, सदा पिर रावे अपना, तिना सुखे सुख विखाए, ज्ञान विहूणी पिर मुतिया, पिर मन पाया जाए, अज्ञान मत्ती अंधेर है, बिर पिर देखे भुख न जाए, आप हो मिलो सहेली हो, मैं पिर देव मिलाए, पूरे भाग सतगुर मिले, फिर पाया सच समाए, से सैया सुहागणी।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता तो प्रमणो ना विसर जिन सब केश

संग सुमाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच सिंह मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

संता संगत मानस प्रीतम भगत सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इसना।

आ निर्मल इस दिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए, चारे कुंडा पालिया सहबन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार, तल गुरदाता नाम का पूरा जिस पंडार।

पर क्या छोड़ी बात गुमान। रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात, क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों

छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी पंपया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवां तित्तर वसे सोहलड़ी।

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, दूते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही।

पवे अचिंता जाल हरहाओ। सबज गबादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हों तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार, सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना इया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोटड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कसक सवट्टी लाई है परखे चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द पे सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगती पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

रहे सुहाग भाई रे अबर नही मैं ताओ मैं तन्नाम निधान गए गुरदिया बल जाओ अरहाओ गुरमत पात साबा तिस तिसके संग मिलाओ सिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ मैं अंदले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदला किले ना गीटाओ बिन सतगुर नाओ ना पाईए बिन नावे कैसाओ आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत तब लग मैल ना पाईए जावलग साज ना चीत सब दर पे कर बाईए।

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कह सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गाईए, जो बन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बाद सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान स जानिए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया

मैं तुद बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए। हरहाओ नाम सलाही रंग स्यों, गुर के शब्द संतोख। जो दिसे सो चलसी, कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख। आखने आखे केतड़े गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए। जुत पावे से पले खोटा खरा न कोए। कुरसरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास। अच ताद पासा की कड़ी गए शब्द विगास।

राम नाम मन वेदया अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रवरतो सुख सार क्यों पावे त्यों राख तू मैं घर नाम आधार मन रे सची खसम रजाए किन तन मन सा सिगारिया ते सेती लिवलाए हरहाओ तन बै संतर होमिए एक रत्ती तोल कटाए तन मन समदा जे करी अन्तन अग्न जलाए।

राम नाम मन विद्या गुरदिया सदान मन बुद्धि केतिया केते वेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सचो ओरे सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए कर मिले सज पाइए दुर्बख्श ना मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महे समाए ई अमृत संतोखया दरगह पैदा जाए काड़ कड़ वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुभाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरे चूटे शब्द कुमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिसे तौलहार बग्गे बंक द्वार कर मन खुशी उजारे।

आगे पूछना हो भाई जबेली कुर करतार, आप चिड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार, मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग, नारी देख विगासी है नारे हरख सो सोग, गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग, चित ले वित जामुन सागत डोल डोलाए, बार टूंड गुची है कर्म वस्त सुधाए, मन बखो में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए, साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण, रगत बिंद का यो तनो अग्नि पास पिराण, पावने के वस देवरी मस्तक सच निशान, बहुता जीवन मंगिए मुआरा लोड़े कोए, सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए, नाम विहूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए, जो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए, तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए, गुरमत होए विचारिये सुबना एव जग लोए, अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूधे माए, बिन दल कमन सो नाथिए।

गुण निधान पाया तिसकी कीम न पाई, प्रभ सख हर जी ओ मेरा अंते होए सखाई। पेयड़े जग जीवन दाता मान मुख पात गवाई, बिन सतगुर को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई, पेयड़े जग जीवन दाता गुरम

क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जीव बद है, हम में कर्म कमाए, बिन शब्दे परम न चूकई, ना विचों हम में जाए, बिन प्रीति भगत न होवई, बिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण न जापनी, बिन गुण भगत न होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग मोहल्ला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मानव कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

पाए या सतगुरु मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे या सतगुरु मिले सुपाए। मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए। सत बलिहारी गुर अपने विटो जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता। प्रभ नित वसे सबना कट अंतर गुरमुख विले जाता। नानक नाम मिले वडियाई उर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा सहजे नू सब लोच दी बिन गुर पाया ना जाए। पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम पुलाए। गुर पेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए। भाई रे गुर बिन सहज ना होए। सबदे गीते सहज उपजे हर पाया सच सोए। हर हाओ सहजे गाव्या थाए पवे फिर सहजे कसनी बाद। सहजे की भगत उपजे सहज प्यार बैराग। सहजे गीते सुख सांत होए फिर सहजे जीवन बाद। सहज सारा की सदा सदा सहज समाध लगाए। सहजे की गुण उचरे भगत करे लिवलाए। सब देगी घर मन वसे रसना हर रस खाए। सहजे काल वडारिया सच सुनाई पाए। सहजे हर नाम मन वसया सच्ची कार कुमाए। देवड़ भागी जिन्नी पाया सहजे रहे समाए। माया विच सहज ना उपजे माया दूजे पाए। मनमुख कर्म कमावणे।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा।

तान चितवै तान संचय बन जा रहा मित्र। हर नामा हर ना सुमाल, हर नामा हर घर कदे ना सुमाले, जे होवे अंत सुखाई। क्यों तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनू कृपा करे गुरु मिले, सो हर हर नाम सुमाल। कहो नानक तीजे पैरे प्राणी, से जाय मिले हर नाल। चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्रा, हर चलन वेला आंदी। कर सेव पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र, सब चली रहन वेखन दी। हर सेवो खिन खिन टिल मूल ना करे हो, चित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर सेती सदमान हो रलिया, जन्म मरण दुख खोवो। गुर सतगुरु स्वामी भेद न जानो, जित मिल हर भगत सुखन दी। को नानक प्राणी चौथे पैरे, सफल रहन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां, पहले पैरे रहन केवन जा रहा मित्र। तार पाए ता उधरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र। तर मोलत कर्म कमाहे, मोलत कर दीनी कर्म कमाने। जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुध बनता। तिन पितर प्रभु संजोया, कर्म सुकर्म कराए आपे। इस जनते वस किश नाहे, कहो नानक प्राणी पहले पैरे। तर पाए ता उधरे माहे, दूजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र। पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्र। मन मत्ता अंग में, बुरा भला ना पछाणे प्राणी। आगे पंथ करारा पूरा, सतगुर कभू ना सेवया। सिर ठांडे जम जंदारा, धर्म राय जब पकस बवरे। तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पैरे प्राणी। पर जोबन लहरी दे, तीजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र। बिग संचे अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोह लपटिया बन जा रहा मित्र। अंतर लहर लोभान, अंतर लहर लोभान परानी। को प्रचित न आवे, साध संत सो संग न किया। बोजोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी। एक निमख न लगो ध्यान, को नानक प्राणी तीजे पैरे। बिग संचे अंध अज्ञान, चौथे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र। तिन नेड़े आया सोए, गुरमुख ना सुमाल तू बन जा।

हर जन मिल जंज सुहंदी पेव कड़े घर जब सुहेली विच सौरड़े खरी सुगंधी सौरड़े विच खरी सुगंधी जिन पेवकड़े नाम सुमालिया तब सबल्यो जन्म तिना दा गुरमुख किन्ना मन जिन पासा टालिया हर संत जिन्ना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बा बोला हर जन मिल जन सुगंधी हर प्रम मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर सोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर घर भगती काज सुहेला गुर सदगुर दान देवाया खंड वर पंड हर सोभा होई त्यो दान ना रले रलाया होर मनमुख दाज जे रख दिखल है

शांत प्रेम ठगौरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तरवस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ न माया होया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोया डकना साई नाम अमोल कीम न कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान दो।

प्रसाद हार उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोए जियो हार जी सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोए तो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोह माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर न कोए हर गुर सुननाई पाइये बणजारिया मित्रा वडपाग प्राप्त होए हर हाव संत जना बिन पाइया हर किने न पाया ना हो विच होमे कर्म कमाव दे जो वेसवा पुत निनाओ पिता जात ना होई है गुर तुठा करे पसाओ वडभागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन हर घर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ हर हाओ जब लग जोबन सास गए तब लग नाम त्याए चल जा नाल घर चरसी हर अंते ले छिड़ाए हों बलेगारी तिन को जिन हर मन उठाया जिनी हर घर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्त घर प्रभ लिखया जन नानक नाम त्याए मन घर घर प्रीत लगाए वडभागी गुर।

हर आपे परम भुलाएगा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रकाश है, से विरले के ही के हों बलेगारी तिन कौ, जिन घर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रकाशिया, मन हर घर मुठड़ा है, मन हर घर जपन करे, हर गुर सुननाई पज पो जिंदु, साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ, धड़कड़ रमैया मन मसे, क्यों पाईए कित पत, गुर पूरा सदगुर पेटी है, हर आए वसे मन चित, मैं तर नाम आधार गए,

जन्म सकार था जे तिनके संग मिला हा पौड़ी तू आपे जाल मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हूं बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मानमुख ना विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया

भगती रंग न उतरे सहजे रहे सुमाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तुद आपेरिक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ सत तिनी ढाया तुद आपे पावे सो करे तुद ओतै कम ओ लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण है माया मोह सवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेत जो दिंदा रिजक संभाहे जम का फहा गलो ना कटिए फिर आवे जाए मानमुख किशु ना सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा तगुर से सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आ पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चे शब्द सालाना सुखे सुख निवास जब तब संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाओ पाईए मनमुख मोहे विनाश ज्यो पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास तब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब कुछ मिले एक ना दूर है पास तब बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास सब तुदे नू सालहां दे दर गुरमुखा नू परगास। सलोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोहे प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख का वार दूजे पाए जगत प्रबोध दा ना बूझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तिनी नाओ पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नू आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक सबदरते से मुक्त है हर जीव हेत प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर सबदी हर पाईए हर पार लंघाए मन हठ किने ना पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। सलोक महला तीजा नानक सो सूरावरी आम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मरे अहंकार मरण नगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम वसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख वसारिया। महला तीजा गुर पूरे हर नाम दिड़ाया तिन विचो परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाई कर चानन माग दिखाया होमे मार एक लिव लागी अंतर नाम साया गुरमती जम जोए न साके साचे नाम समाया।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जाम राव हसे, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गय माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तरमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े मैं रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब के जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किछ कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, तनक कलस एक पाया, समय तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

जियो पिंड सबरास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, सदा सदा तू है सुखदाई, निब निब लागा तेरी पाई, तारक मावा जित पावा, जा तू दे दयाला जियो, प्रभु तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे पै कुंट साई, तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नांग सो पाया, आड़ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो, माझ महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया, जल थल महियल दहत वरसाया, सांध पई बूझी सब तृष्णा, अंध पया सब ठाई जियो, सुख दाता दुख पंजन सारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रतपाले, पै पैरी तसे मनाई जियो, जा की शरण पया गत पाईए, सास सास हर नाम ते आईए, तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर, सब से की आ जाई जियो, तेरा मान तन प्र तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आड़ पैर तो त्याई जियो, माझ महला पंजवा, सबे सुख पय प्रत उठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, तय समाध लगी लिव अंतर, सुवरस होई जाने जियो, आगम अगोचर साहिब मेरा, काटकट अंतर वरते नेरा, स अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाणे जियो, प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकम पछाणी, सह संतोष सदा तृप्ता से, अंध खसम कै पाणी जियो, हथी दित्ती प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास पिए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माणे जियो, माझ महला पंजवा, कीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण से मनवाही, अंगीकार किया तन करते, तो का डेरा टहाया जियो, मन तन वस्या सच्चा सोई, बिखड़ा थान दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो, युज करे सो आपे आपे, बुद्ध स्याण पिछूना जापे, अपना संता नु आप सहाई, प्रभ परम पुलावा लाया जियो, चरण कमल जन का आधारो, आठ पैर राम नाम अपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो, माझ महला पंजवा, सो सच मंदर जित सज त्याई है, सूर दा सुहेला जित हर गुण गाई है, ता तरत सुहावी जित वस्ते हर जन, सच्चे नाम मिटो कुरबान जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्या जीवे जन तेरे, सच सदु मन मानो जियो, सच सलाहन वडभागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंगरते तेरे तु भावे, सच नाम निशानो जियो, सच्चे अंत न जाने कोई, हन तनंतर सच्चा सोई, नानक सच त्याई गे सड़गी, अंतर जामी जानो जियो, माझ महला पंजवा, रैन सुहावड़ी दिन से सुहेला, जब अमृत नाम संत संग मेला, कड़ी मूर्त सिमृत पल मंजे, जीवन सब तताई जियो, सिमृत नाम दो सब लाते, अंतर बाहर प्रसाते, पय पो परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो, प्रभ स्मृत वड ऊचे पारा, नौ दिना परे पंडारा, आद अंत मत प्रसोई, दूजा लवे न लाई जियो, कर कृपा मेरे दीन दयाल, जाग जाते साधर वाला, देह दान नांग जन मांगे, सदा सहर त्याई जियो, माझ महला पंजवा, ऐथे तू है आगे आपे, जी जंतर सब तेरे थापे, तुद मन अवर न कोई करते, मैं तर ओढ़ तुम्हारी जियो, रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्मपुर अंतर जामी, जिन सेवा तिन ही सुख पाया, तो जन्म न जुए हारी जियो, नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सबर ए है कारी जियो, दृट कर अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सिविन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माझ महला पंजवा, मन तारता राम प्यारे, सर्व दीजे अपना वारे, आड़ पैर गोविंद गुण गाइये, बिसर ना कोई सासा जियो, सोई सजन मीत प्यारा, राम नाम सा संग बिचारा, साधु संग तरी जे सागर, कटिये जमकी फासा जियो, चार पदार्थ हर की सेवा, पार जा जप लख पेवा, काम क्रोध किलवे गुण काटे, पूर्ण होई आसा जियो, पूर्ण भाग पैस प्राणी, साह संग मिले सारंग पानी, नानक ना वस्या अंतर,
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਸ ਉਦਾਸਾ ਜੀਓ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੁ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਟਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਓ, ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਵਨ ਦਰ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁਰ ਕੁਮਾਈ, ਗਿਆਨ ਧਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ ਜੀਓ, ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਉਥਾ ਪੁਨਹਾਰਾ, ਆਪ ਇਕੰਤੀ ਆਪ ਸਾਰਾ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲਹਿਣ ਵਜੋਗਾ ਜੀਓ, ਅੰਚਲ ਲਾਏ ਸਭ ਸਿਟ ਤਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਓ ਆਪ ਜਪਾਈ, ਗੁਰ ਬੋਧ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਤੁਰਸਨ ਜੋਗਾ ਜੀਓ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਾ ਪਲੀ ਜਾਏ, ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ, ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮੀਠਾ ਜੀਓ, ਤਾ ਪਰੋਈ ਇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਏ, ਜੇ ਲਾ ਲੈ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਊਂਦ ਕਵਲ ਜਿਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਤੇਨ ਸਰਮ ਨਰੰਜਨ ਡੀਠਾ ਜੀਓ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਆ ਤੂੰ ਆ ਪਛਾਣੇ, ਹੋਮ ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ, ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਪੀਠਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਕਲਮਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੇ ਜੀਵੇ, ਬਿਰਸਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਤੀਠਾ ਜੀਓ, ਮਾਂ ਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਝੂਠਾ ਮੰਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਤਿਕੋ ਉਮਰ ਤੇ ਕੜੀ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਦਗੀ ਸੇਵੈ, ਸੋ ਗੁਰਮਲ ਨੇ ਚਿਲ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਜਾਗੀ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਲਹਿਣਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਮੁਠੇ, ਵਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਮੁਠੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਤੂੜਤ ਬਾਂਚੈ, ਨਾਮ ਸਚੇ ਕਾ ਗਹਿਣਾ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਵਰਨੇ ਚਿਲ ਪਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਿਣਾ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਬਦ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੱਚੀ

गवाए, निर्मल गुण गावे ने साचे के, निर्मल नाद बजावणिया, निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचो आ मुआ तिथे मोह ना माया, निर्मल ज्ञान त्या अत निर्मल, निर्मल बाणी मन सामणिया, जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर शब्दे धोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे सोभा पावणिया, निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे, निर्मल नाम लगे बड़भागी, निर्मल नाम सुहावणे आ, सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सत नाम मल कदे ना लागे, मोह कूजल सत करावणे आ, मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले थाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणे आ, मैले निर्मल सबगुण सुभाए, से निर्मल जो हर सचे पाए, नानक नाम से मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणे आ, माध महला तीजा गोविंद उज्जल उज्जल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उज्जल सदा मुख सो है, अत उज्जल नाम तिहा मनिया, हो मारी जीव मारी गोविंद गुण गावणे आ, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण सब सुनावणे आ, रखाओ गोविंद गावे सह सुखाए, गुर कह पै उज्जल होमे मल जाए, सदा आनंद रह भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणे आ, मनुआ नाचे भगत दरिड़ाए, गुर कह शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणे आ, ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपड़ दुख पावणे आ, गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन रत सह सुपाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरमुख भगत थाए पावणे आ, बोताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंध नाचे, दूजे पाए दुख पावणे आ, ज अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजुगता, गुर के सब सदा हर त्याए, हिया भगत हर पावणे आ, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होर भगत न पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी चित लावणे आ, माज महला तीजा सच्चा सेवी सच्चा राही, सच्चे नाए दो कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमुख मन सामणे आ, हो मारी जीव मारी सुख सह समाध लगावणे आ, जो हर सेवे से सदा सुह सुभा सुरत सुहावणे आ, रखाओ सब को तेरा भगत कहाए, सेई भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदे सहारा हन, रंग राते भगत करावणे आ, सब को सच्चे हर जीव तेरा, गुरमुख मिले ता चूके फेरा, जा तो भावे ता नायर चावे, तू आपे नाउ जपावणे आ, गुरमति हर मन मसाया, हरक सोग समो गवाया, एक सुन लागी सदगी, हर नाम मन मसावणे आ, भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ नित नाम सिया मने आए, पूरे भाग सगुर पाया, सबदे मेल मिलावणे आ, तू दयाल सदा सुदाता, तू आपे मिल है गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम डाई, नाम रते सुख पावणे आ, सदा सदा साचे तुसारा ही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सुमन रहा सुमाए, मन मने मने मिलावणे आ, गुरमुख होवे सो सालाहे, साचे ठाकुर वे प्रवाहे, नानक नाम से मन अंतर, गुर शब्दी हर मिलावणे आ, माज महला तीजा, तेरे भगत सुहे साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कै गुणी सुमावणे आ, हो वारी जीव मारी, नाम सुन मन सामणे आ, हर जीव सच्चा ऊंचो ऊंचा, होमे मार मिलावणे आ, रखाओ हर जीव साचा सची नाई, गुर प्रसादी किसे मिलाई, गुर सद मिले से विछड़े नाही, सहजे सच समावणे आ, कोई ते बार खुशू ना होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमतिया मिलावणे आ, कामण गुण मंती कर पाए, पए पाए सीगार बनाए, सतगुर सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणे आ, शब्द सारण तिना ठौर ना ठाव, प्रफुले जो सुन्य करकाव, हलत पलतनी दुमे गवाए, दुखे दुख वेखावणे आ, लिखदियां लिखदियां कागद मस कोई, दूजे पाए सो पाए न कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चित लावणे आ, गुरमुख सचो सत लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार, सज कागद कलम सुवाणी,

तुम ऐसे परम चुकाही, योग करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाही, हरहाओ स्त्री पुरख होए कै, क्या वे कर्म कुमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझगी मह सुमाही, इतने जन्म फूल परे से, जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य तोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तस मिलया, पुनरप जर्मन आ

प्रगट पई जप नाम मुरारा शिव सगत मिटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई गे संत जनो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिल्यो हरस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गद कीनी हर अस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी धन तन गुर सत पुरख है।

गुर संगती उपदे दियो हर नाम छिड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले ता विस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम घर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीव आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया के।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मर

की चरणी लाग, सर्व जी है जाके साथ, कदर विछड़े सब के साथ, उपाय छोड़ गो तिसकी ओट, निमख माए होवे तेरी चोट, सनिड कर तिस नू जान, प्रभु की आज्ञा सद कर मान, गुर के वचन मिटावो आप, हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवां, गुर का भजन सदा अबनासी, गुर के भजन कटी जम फासी, गुर का भजन जी के संग, गुर के भजन रते राम के रंग, जो गुर दिया सो मन के काम, संत का किया सत्कर्मान रघाओ, गुर का भजन अटल अशेद, गुर के भजन कटे परम भेद, गुर का भजन कथो ना जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का भजन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का भजन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे गार, हे जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा बडे आई, ते प्रभु को आड़ पैर ते आई, रमैया रेन साध जन पाव, गुरमिल अपना खसम तिहाव, रहाव जिन कीता मूड ते भगता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवे निंद पाई, तो प्रा मन ते बिसरत नाही, जिन दिया निथावे को थान, जिन दिया निमाने को मान, जिन कीनी सब पूर्ण आसा, सिमरो दिन रैन साहस गिरासा, जिस प्रसाद माया सिल्क काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख घाटी, कौ नानक इसते कशनाही, राखन हारे कौ सहाराही, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, तिसकी सर नाही पौ सोग, ओते बार कछु ना हो, तजी स्याणप बल बुद्ध विकार, दस अपने की राखन हार, जप मन मेरे राम राम रंग, तार बार तेरे सत्संग रखाओ, तिसकी टेक मने मैं राख, गुर

मिटे कलेस सुखी हो रही है। ऐसा दाता सबगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रखाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

आओ। चरण कमल आराध भगवंत, हर सिमर ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक सरण आयो, ऊच स्थान तब से जे पायो, दूध दर्द परम पव नसया, करण हर नानक मन बसया, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, कर कर टहल रसना गुण गाओ, चरण ठाकर के मार्ग थाओ, पलो समो सिमरन की परिया, सिमरत नाम पे पार उतरिया रहाओ, नेत्र संतन का दर्शन पेख, प्रभ अविनाशी मन में लेख, सुन कीर्तन साध पे जाए, जन मरण की

स्वामी सब तुमते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुग जवरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वड भागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वस्या मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमागे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे दास की तूर नानक कौ दीजे गौड़ी महला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए

उतरै जाए, बिन घर सिमरन सुख नहीं पाया, आरंग फीके सा माया, गुरंगे से पए निहाल, कहो नानक गुर पए है दयाल, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, सिमर स्वामी किल बिखनासे, सोग सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जबत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ सा संगत पौ ना प्राति, गुण गोपाल गाय गे दिन राति, हर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दिनी ओट, कहो नानक।

मिल नानखर अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पनवा आड़ पर संगी पटवारे कर कृपा प्रो लहे निवारे ऐसा हारस रमो सब कोय सर्वकला पूर्ण प्रसोए रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुग्ध फल पाहे उगत सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पनवा थाती पाई हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वडभागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सधीसोपाया मया करी पूर्ण हराराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर उजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुख ठाओ गवायो, जो सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, नाकश आवत नाकश जावत, तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मखला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मनता की ओढ़ भी जय रे, जिन तारे ब्रह्मंड खंड हरता को नाम जपी जय रे, रघाओ मन की मत त्यागो हर जन हुगम बुझ सुख पाइये रे, तो प्रभ करे सोई परमानो सुगद ओई त्याये रे, ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे, दीन दर्द पंजन स्वामी जे पावित से निवाजे रे, सब को माता पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे, तेंदे तोड़ नहीं से करते पूरे और तनागर रे, जाग जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे, नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, हर घर कबूरा मनो विसारे, ईगा उवा सर सुख दाता सगल कटा प्रतपारे, रघाओ महा कट काटे पीतर रसना नाम पितारे, शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे, गर्भ कुंड नरक ते रख हजल पारे उतारे, चरण कम आरा तुम मन में जमकी त्रास बिदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे, गुण गावत त्यात सुख सागर जुए जन्म नगारे, ताम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बरेगारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन रतने मूर्ख, सा संगत जप एखे ना रहाओ, सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग, हैवर गैबर राज रंग जा चलो गए मूड रंग, चूवा चंदन दे पूलिया सो तन थर संग रूलिया, मोय मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है, गौड़ी महला पंजवा मान कर तर बेहर नाम नो, सागर लहर संसार संसार गुर बोध पार ग्राम नो, रघाओ कल कालक अंधियारिया गुर ज्ञान दीप उजियारिया, बिख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जब जब हर गुनी, मतवारो माया सोया गुर पेड़ प्रम पखोया, कहो नानक एक तिहाया कालक नदरी आया, गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक, सेवा तारी गुरे टेक, रघाओ अंग जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या, बगसी बजो मिल एक नाम सोग सहज आनंद विश्राम, प्रभ के चाकर से पले नानक तेन मुख उजले, गौड़ी महला पंजवा जीरे ओला नाम का अवर जे करन करामनो, तिन मैं पौहे जाम का, रघाओ अवर जतन नहीं पाई है वडे पा घर त्याई है, लाख इकमती जानिए आगे तिल नहीं मानिए, अंग बुद कर्म कुमामने गृह बालू नीर बगामने, प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले, गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया, नाम हो नाम साहब को प्राण अधरिया, रहाओ करन करावन तुई एक जी जंद की तुई टेक, राज प्रा तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी, ईगा ऊगा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे, अंतर जामी प्रसुजान नांग तकिया तुई तान, गौड़ी महला पंजवा हर घर हर आरा दिए संत संघर मन मसे, पर मोह पो सदिये रहाओ, वेद पुराण सिमरत पने ता ऊच ब्राजत जन सुने, सगल स्थान पे पीत चीन राम सेवक कह रहत कीन, लख चौरासी जून फिरे गोविंद लोकनी जन्म मरे, बाल बुस जान पहो में रही हर सासरण नानक गही, गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइये नीत नीत घर सेविये, सास हर त्याईये रखाओ संत संघर मन मसे, दुख दर्द अनहेरा प्रमन से संत प्रसाद हर जापिये, तुझन दुख ना व्यापिये, जाको गुरु हर मंत्र दे तो उबरिया माया अगणते, नानको प्रमया कर मेरे मन तन वसे नाम हर, गौड़ी महला पंजवा रसना जपिये एक नाम ईगा सुख आनंद करा, आगे जी के संग काम रघाओ,
ਕਟਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਾ ਜੋਗ, ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ, ਤਾਕੀ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਥੀਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਗੁਰਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪਉ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਾਊ ਕੋ ਪੀਰ, ਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹਰ ਅਵੇ, ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਖਾਓ, ਜਾਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਧ, ਤਾਕ ਕੇ ਕਰਤਲ ਨਵਨ ਸਿੱਧ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਤਨੀ, ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾਕੇ ਕਮੀ, ਕਰਨੇ ਘਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਹ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਨਸੈ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੜਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ, ਰਹਿ ਨਹੀ ਗੋ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਓ, ਬੇ ਬਰਚਿਤ ਬੇ ਸੰਤਨਾ, ਹੁਆਉ ਸਿਉ ਰੇਹਤਨੋ, ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਬਿਧੇ, ਇੰਦਰੀ ਵਸਲੇ ਜਿਤਨੋ, ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ, ਨਾਨ ਉਦਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁਏ ਦਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ, ਤਾਨ ਪ੍ਰੋਕਾ ਖਾਨਾ ਰਹਾਓ, ਐਸੋ ਹੈ ਰੇਖਸ ਹੁਆ ਮਾਰਾ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹ ਸਵਾਰਨ।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुझी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

पर शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्ति।

सगल बिसारी करमस्त गुरपूर तरयो मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे रिद अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके आचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेट्यो तो बिसरी तात पराई कहो न जाई यो अचंपो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पै बेगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला मोहल्ला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे महापुरखन यूं कहया बिन घर भजन नहीं निस्तार।

साधो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को फिर लीना, तासु कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सब विद बन आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काय गवाव और हाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुमे आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह माया पुन, भजन राम चित ला को माई। उल्लेओ मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुनकर। निमखन हर गुण गावे रखाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की। बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान। तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो। जे कड राम सुमावे, गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निरठाओ, प्रेम परायण प्रीत मराओ, नदर करे ता बूझे नाओ, माया मोह सर्ब जंजाला, मन मुख चील कुष्ठ बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सा सुमाए, जमण मरना ठाक रहाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कतनी कथो न आवे ओर, गुर कुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुर्मत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तरण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबह।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन भो नाटा ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल भाए उलासा नानक हरस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेस करे बो पसम लगावे नाम सार बहुत पछतावे तू मन हर जियो तू मन सूख।

ले आप हो जाओ। मानम को सूत को कभे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कहे नाए। रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्मन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त ना होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी मोहल्ला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा। पंडित हर पढ़त जो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो में जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुखोई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुखोई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अपमाना, बागजो लाए भये नित्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी मोहल्ला तीजा। ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथे अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा जे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मानमुख अंदर है लपटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर सिना फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी गारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोहे अध परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़भागी। गौड़ी मोहल्ला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा। तेते उपजे देव हो प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम घर राखे सदगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा, नित काल संतावे। गुरमुख जम काल ने

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

भावे अन न पानी, पानी अन न भावे, मरिए भावे, बिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, जो मिले तवे मिलाईए, आपे मिल ले सुखदाता, आ मिलिया खर आए, नानक कामण सदा सुहागण, ना तिर मरे न जाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, कामण हर रस वेदी जियो, हर के सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज सुमाए, दुबदा सहज सुमाए, कामण वर पाए, गुरमती रंग लाए, यो शरीर कूड़क सत भरिया, गलताई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहत उपज।

तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीर है। गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है। फिर दोष नाही सुखे दाते हो मिचड़ी बुरियारे। बिनवंत नानक दया तारो तार आवो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा। हो सिर अर्पी समीत प्यारे जो प्रादे संदेसा। अर्प्या ता शीस सुथान गुर पै तंग प्रभु दुखाया। खिरमाए सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया। दिन रैन रलिया करे कामण।

पितर कर पातो ज्ञानी सोए जाके गिरड़ सोउ कैत सोंत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबता के ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना ते मिट नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन वासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रवे आप पास आपन हों करे नानक।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये पुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोय ताको मात पिता सो तिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जून दुख पाए, मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए। टहेत टहेत अब टह परे, साजना सरनाए दुके फाहे काटिया, नानक लिए सुमाए। श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, अणा हो अणा तू अण छुट, निट न जाइयो दूत पौड़ी, नाणारण ते सीजिए आत्म जीते कोय। होमे अंस लार मरे, तो सोभा दू होए, मणि मिटाए जीवत मरे, पुर पूरे उपदेश, मनुआ जीते हर मिले, ते सूरत तनवेश, अणा को जाने अपनो, एक टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रहे, खोपरा पुरखे पार, रेण सगल या मन करे, एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख।

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी पावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर घर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मै रव रहया सांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत किरपाला ओरे कछु न किन्हु किया नानक सब कछ प्रभ ते हुआ सलोक लिख है कते ना छूटी है खिन खिन फूलन हार बक्सन हार बक्स लै नानक पार उतार पौड़ी लूण हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण तैद ढूंढन जाए देवन हार दातार प्रभ निमख न मने बसाए लालच चूड़ बेकार मोह या संपे मन माहे लंपड़ चोर निंदक मह तिनहू संग बिहाए तुद पावे ता बख्श लहे खोटे संग खरे नानक पावे पार ब्रह्म पान नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त भरमे जन्म अनेक भवजल ते काढ़ो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए खेमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई अंध सुख बिश्राम खेप नबाही बहुत लाभ।

कर कृपा। हम मूढ़ पापी जित लगतारा, गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इहो श्लोक आदि अंत पढ़ना, गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। श्लोक एक ओंकार, सदगुर प्रसाद आदगुर ए नमः, जुगादगुर ए नमः, सदगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन मय मिटावो, सिमरो जास विश्वंपर एक, नाम जपत अगणत अनेक, वेद पुराण सिमरत सुधाखेर, इन्ने राम नाम एक आखेर।

राम भगत जना कई मन बसराम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै, प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ के सिमरन अन दिन जागै, प्रभ के सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ के सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध के संग सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जपता पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तर्क है मानी, प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब के सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जमत्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोताज, प्रभ को सिमरह से सर्व के राज, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कबहु न चूरे, प्रभ के सिमरन हर गुरबानी, प्रभ के सिमरन सहे सुमानी, प्रभ के सिमरन नित्यलयासन, प्रभ के सिमरन कमल बेगासन, प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रा सिमरन का अंत न पार, सिमर है से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, घटघट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाथ अष्टपदी, जय मात पिता सुध मीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा भयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्कल होवे अदपारी, हर को नाम खिर महे उधारी, अनक पुने चरण करतनी तरै, हर को नाम कोड़ पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, हर सेठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग इहो जात अकेला, तै हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गद पाई है, टूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक विघ्न जय आए संघार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड़ पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गणे जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंते

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड भागी पाईये, संत की सेवा नाम ते आईये, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को होए। श्लोक बहु सतर बहु सिमरती, पेखे सरब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया।

सगल कटा को देव उदान तरण करावन हार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनिया तो प्रभु सदा सुमाल जिनकी अत चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी परमैया के गुण चेत परानी तवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू सासवार सीगारिया सर्व अग्न में जिने उबारिया पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद दिर्द पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ तो दैन इहो निर्गुण गुण कशु न बूझ बख्स लियो तो नानक सीज ये प्रसाद हर ऊपर सुख बस तुद प्रात मीत बनता संग हस ये प्रसाद पी वैसी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला ये प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन हस्त पाप कर्ण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ लेओ।

ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोड़ गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा को खा करे जे ठाकर सो ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सो अपनी दे रास खाद पीत बरते अनदे उलास अपनी अमान कछ भौर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौर उसका विश्वास न होवे।

काल अनक पाद माया के हेत सर पर होवत जान अनेत दीर्घ की छाया सो रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चलन हार लपट रहो तय अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ न आवे केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे हस्त मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर्व कार को थावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तान नहीं पर पुकारा मिथ्या बासले दिकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सबल दे नानक हर हर नाम लय बिरती सागत की आरजा साज बिना के होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जान नहार प्रभु परवीन बार पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आपत जावत जन्मय मरे जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रवजत नानक उन जन चरण परत करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप कर तनबेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा वो पाप स्यान पर सगल

आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना ब्रह्मज्ञानी की सब उपरमय ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पय ब्रह्मज्ञानी सदा समंदरसी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्त ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुत।

नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परे पुकारो माह। ब्रह्म ज्ञानी कह नागी तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सोफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाईए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या ना जाए अधाखेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सबसठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर धारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रय रूपना पेखे नेतर साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हर मन की बासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोड़ मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए पिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मन खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शोध, राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल सुख में जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर उर तार पास प्रेत मुग्ध पाथर को तार, सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते न पाई गे धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तुझ नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निट हर जान, तो दास दर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म खेतावे, जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत नानको पुरख कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित का रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई पुन हो, पसरे आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जान अंत न पारावार, नानक रचना प्रवृति बहुत अनक प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार, कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्प को हिरे कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस पोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਤ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਧਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਤਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤ੍ਰਿਜੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਤੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋ ਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਬਜ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹੱਥ ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਲ ਵਿਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਦਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਏਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਨੇ ਬਹੁਪਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮ ਹੈ ਸੁਮਾਤ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋ ਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਭਏ ਸਦਹੀ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਆਤਮ ਰਸ ਤੁਕ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾ ਸਾ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣ ਜਲਤਲ ਮਹੀ ਅਲਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

हर करंग हस्से कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू मां क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बह बड़ राजा कभो पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडर करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक हो ज्ञान कभू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मर्तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलया एक टाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुरबान सलोक। सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत। आस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे। तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी खा मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। तब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी। पुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दरगे परवान। कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे। अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अंक जितन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे, तिसे पलाई निट न आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, को नानकता की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब सुख सुगुना ही कोए। जब ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग ने चलना ही चीत। जब लग मो मगन संगमाए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लग तो उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे, ने तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, सोपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करामन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करामन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृढ़ करे तैसा होए, आपे आप आप प्रसोए। जोग तीनों सुअप

रख एको आप मानुख कैक्षिना ही हास तिसका हुक्म बूझ होय तिसका नाम रख कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रसोय नानक बिघन ना लागे कोय उस्तुत मन में कर निरंकार करमन मेरे सत व्यवहार निर्मल सुन अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपगे हर बिंद कर घर कर्म श्रवण घर कथा हर दर गए नानक उज्जल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार चेतनवंत गणी संसार मर्तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने ये तुझकी यो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक ते निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजे तुझकी जानो तिशना बुझे साध संग हर हर जस कहेत सर्व रोग त्यो हर जन

काम। गत नानक जब एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह, प्रभु की जोत सगल कड़ सोह, तनवंता होए क्या को गर्भ।

संतन कर पाया तज अपमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संत है संचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोय मुख उजल हर दर गए सोय यो वापार विरला वापार नानक ताके सद बलिहार चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवावड भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक विघन ते साधु राख है हर गुण गाए अमृत रस चाख है ओड गई संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सरबन दान जाकी दृष्टि मागे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस तिसका ओ करने जोग जिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊज निर्मर ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल।

अनदरूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सोनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सा पावन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख स महे सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर दे परवेश सत निरत बूझे जे कोय नाम जपत ताकी गद होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिस की सृष्टो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कीमित ना जाने किया नानक जोत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बुझत आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के बदन पदार्थ लहे वे दाते दो कटनहार जा के संग तरे संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आदे सच जुगादे सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सस परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यामनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होय नानक सत सत प्रसोय सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करामन तिन मूल पछानिया जा किरदे विश्वास प्रव आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरप होए बसाना जिस ते उपजत सुमाए सुमाना।

कै रंग सेवक को प्रपालन हार सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नामरतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नहीं दृटाया नाम तन नमो रूप रंग नमो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमान।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सा मीत बसारो चरण कमल हृदमय उर तारो करण कान सो प्रसमरथ विरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वन दान मैं हर नाम दान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कह नाय दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

जाए जे भावे ते लय मिलाए कौ निटकम कहिए दूर आपे आपिया भरपूर अंतरगत जे आप जनाए नांग तेजन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतार सर्वनैन अपेखनगार सगल समगरी जा कातना आपन जस आप की सुना आमन जान के खेल बनाया आज्ञाकारी की नीम आया सबके मद अलिप्तो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले सुमाए इसते हुए सो नाही बुरा और है कहो किने कुछ करा आप भला करतूत अतली की आपे जाने अपने जी की आस तारी सब साच ओत पोत अपन संगराच ताकि गतमत कही न जाए दूसर हो इतना सो जी पाए सिक्का किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के जान जो जाने ते सदा सुख होए आ मिलाए लय प्रसोए ओ तनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आमन का ए स्वभाव जन के संग चित आवे नाव आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निट कर पेख सास सास सिमर हो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गोत्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास संग अग्न सागर तर हो हर तन के पर ले पंडार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पर परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन संत कुमार तो होते उदार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सबलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वज सुन सुन अंध करे प्रभु गज प्रगटे गोपाल महात कहे माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आ मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम सा संग लैन तो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक निगही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोहो तन धान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रण सबल होए सब ते ऊज पाए अस्थान बौर न होवे आमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जो प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल परगास सबके मध्य सगर ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल हे जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपे मन कोय सब जुग में ताकी गद होय गुण गोविंद नाम तुन वाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांग केवल हर नाम गोविंद भगत के मन बसराम कोड अपराध सासंग मिटे संत के पाते जमते छुट्टे जाके मस्तक कर्म प्रापाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तेजन आवे हर प्रचीत जन्म मरणता का दुख निवारे दुलभ देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मनमाये सुमानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एक गुण नाम सुखमनी स्थिति गौड़ी।

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजी है, मलहो में कड्ढे तोए, सच वणन जय रंग स्यो सच सौदा होए, टूटा मूल न आवई लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साराई सच सालाना स सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे स सच्चा हरख वाले, स सच्चा जिनी अराध्या थे जाय रले सच नाले, स सच्चा जिनी ना सेवया थे मन मुख भूड बिताले, ओ आल पताल मोह बोल दे ज्यों पीते मद मतवाले,

तपे तरम हारिया, भाई ए तपा ना होवी बगला है, भय साधना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करे, संसारे की

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हवठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन

प्रणनात्य कहो जो हर लड़ लागे जीवत से प्रवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से ही वड भागे नाय विसरे त्रिग जीवना टूटे कच तागे नानक धूल पुनीत साध लख कोट पेरागे श्लोक महला पंजवा धरण सुवलनी खाड़ रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा सबे काज सुहे लड़े थीए गुरु नानक सदगुर तुठा महला पंजवा फिरदी फिरदी दै दिसा जल पर्वत बनराए जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्याव होए सगल की रेणका हर संग सुमाव।

भज केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ, काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु आगर, साधु सुपावे कर सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट महारस पी जय। कबीर जी गौड़ी, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन माधव स्यों लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है रहाओ, पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले राग राया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब

कबीर जी उपजे निबजे निबज समाई नयने देखत इहो जग जाई लाज ना मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा रखाओ अनक जतन कर काया पाली मरती बार अग्न संग जाली।

आप मोहे मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनेहारी टूटी लाज परे मत सारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनेहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्मा किए बहुरंगा ऐसे कार हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

जे कुल पूत ना ज्ञान बिचारी, विधवा कस ना पई महतारी, जे नर राम भगत ने साधी, जन्मत कस ना मो अपराधी, रहाओ मोच मुच गर्व गए कीन बचया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप।

गौड़ी ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे बिखिया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुख हमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय देव नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी आहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहया पर पूर सदा संग नाही हर

कहिए आपन कया ना लेगी, सर जियो काटे निर जियो पूजे, अंतकाल को पारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना, कैत कबीर अकुल नहीं चेतया, बिखिया सो लबटाना गौड़ी, जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन सुमाया, अंजन माये नरंजन रहिए, बौड़ ना पव जल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बुलोइए, गुरमत मनुआ अस्तर राखो, इन बिद अमृत पीओइए रखाओ, गुर के बाण बज्र कलश दी, प्रगटया पद परगासा, सगत अंधेर जेवड़ी प्रचूका, निचल शिव कर बासा, तेन बिन बाणे तनख चढ़ाइए, यो जग बेद्या पाई, दैत बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रखी लिवलाई, उन मन मनुआ सुन सुमाना, दुबदा दुर्मत पागी, कौ कबीर अनपो एक देखेया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागन टेप दे, उल्टद पवन चक्कर खट पेदे, सुरत सुन अनरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी, मेरे मान मन ही उल्ट सुमाना, गुर प्रसाद अगल पैयावर, ना तरथा बेगाना, रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा करमानिया, अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कहिए, ऐसा कोए बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी गौड़ी, ते पावस सिंध तूप नहीं सहिया, ते उत्पत परलो नाही, जीवन मृत ना दो सुब्याप, सुन समाद दो ते नाही, सहज की अकथ कथा है।

अर्ध करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिंस अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

ना तरखर हृसे गैराय बुधवार बुध करे प्रगाश हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सुधा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुट तीन आगे अंश कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामन तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे नाम सारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई चरण ना छाडो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांभा बेग मिलो जन करना बिलंबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खोब ना खता न तरस जवाल आ मैं खूबतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रघाओ कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही आबादान सदा मशहूर ऊहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल न को अटकावे कह रविदास खरा चुमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बैरागन रविदास जियो काट आव काट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार रमैये सो एक बेनती।

आपे नदर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवत है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तब ताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उठदिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदले दहसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहया लिवलाए हरहाओ जी उपाय जुत खत कीनी काली नत क्या वड्डा पाया किस तू पुरख चोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रहया नाल कुटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिट गया आगे अंत न पायो ताका कंस शेद क्या वड्डा पया रत्न उपाय तरे खीर मथया होर पगलाए जे असी किया कहे नानक छपे क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्तारी हराम ना फल हुआ तिस रूप नारेख अनाह दवाजे शब्द निरंजन किया करे विख्यान जाने जे कोई अमृत पीवे सोई रहाओ जिन पिया से मस्त पय है टूटे बंधन फाहे ज्योति जो सुमानी पीतर ता छोडे माया के लाहे सर्ब जोत रूप तेरा देखया सगल पवन तेरी माया हरारे रूप निरालम बैठा नदर करे विच छाया बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो तो रत नानक कहे विचारा आसा महला पहला मैं गुण गल्ला के सिर पार।

एक वर्ण दिसे सब खेह जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मोहल्ला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बेगास परमल रूप उज्जल मोती चुगे हंस सर्व कला जग दिस अंश जो दिस सो उपजे बिनस बिन जल सरवर कमल न दिस रहाओ बिरला बूझे पावे भेद साखा तीन कहे नित बेद नाद बिंद की सुरत सुमाए सदगुर सेव परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवंतो राजन राज सदा दिगसंतो जे तू राखे किरपा तार बूढ़त पाहन तार तार तिर पौन मैं जोत तिर पौन मैं जानिया उल्ट पई कर कर मैं आनिया अहंस भगत करे लिवलाए नानक तिनके लागे पाए आसा मोहल्ला पहला गुरमत साची हुजर दूर बहुत सियाणप लागे तूर लागी मैल मिटे सजनाए गुर प्रसाद रहे लिवलाए हाय हजूर हाजर अरदास दुख सुसाच करते प्रपास रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे कैन कसन वारा नहीं आवे क्या देखा सूझ बूझ न पावे बिन नावे मन तृप्त न आवे।

आए, नदर करे इतना सदगुरु मिले, परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा मोहल्ला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसर है दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। अखर देख बाग पै चोखी, सिंचित भाव करेगी, सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही। कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती। हर नामा जाजा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ। बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम सुमाल। ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर ना पाल। तीने तत् गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े बीचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश बचोर ना लागे। तिलक ललाट जाने प्रावेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक। आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार। गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास। मैली खजम सुने साबास, सच्चे तख्त बुलावे सोए। देव डियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण। गुर का शब्द सच निशान, मने हुक्म सो प्रगट जाए। सच निशाने ठाक न पाए, पंडित पढ़े वखाणे वेद। अंतर अवस्थ न जाने भेद, गुर बिन सूझी बूझ न होए। साचा रवरया प्रसोए, क्या होए अखा आख वखाणी। तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण। गुरमुख साजता गुजरान, आसा महला पहला। काची गागर दे दुखेली, उपजे बिनसे दुख पाई। यो जग सागर दुत्र क्यों तरिए, बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे। सर्बी रंगी रूपी तू है, तेस बगसे जिस नदर करे रखाओ। सास बुरी कर वास न देवे, फिर सो मिलन ना दे बुरी। सखी सजनी केखो चरण सरेव, हर गुर कृपा ते नदर तरी। आ विचार मार मन देखया, तुम सामीत न अवर कोई। ज्यो तू रख तिभगी रहना, दो सुख देवे करे सोई। आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई। तुरियावस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लगी। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख पेवा। नानक राम नाम मन रता, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदे, मोह कुटुंब मोह सवकार। मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर। साच नाम हृदय रवे शरीर, रहाओ सच नाम जा नवन दपाई। रोवे पूतना कल पै माई, एत मुए डूबा संसार। गुरम कोई उतरे पार, एत मुए फिर जूनी पाहे। मोहे लागा जमपुर जाहे, गुर दिखिया ले जब तब कुमागे। ना मो टूटे न थाए पाहे, नदर करे ता यो मो जाए। नानक हर्षों रह सुमाए। आसा महला पहला,
ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਹਲਾਖੇ ਪਾਰ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਹੜ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵਗੋਵੇ ਰਖਾਓ, ਮਨਮੁਖੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ, ਬਿਨਖ ਸਿਮਰਨ ਪਾਵ ਸੰਤਾਪੀ, ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਲਹਾ ਕਿਛ ਲੇਵੋ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਪੇਵੋ, ਐਸਾ ਹਮਾਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਈ, ਗੁਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਸਗਲੀ ਸੌਂਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ, ਤਉ ਜਮ ਕਾਂ ਕਰੇ ਮੋਸੂ ਆਗੇ ਰਹਾਓ, ਆਸਨ ਰਾਸੀ ਤਉ ਸੁਨਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ, ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਨ ਪਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਰਹਾਓ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾ, ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਾਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਗੈ ਸੋ ਜੋਬਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਅਸੇ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਪਈ ਲੈ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ, ਰਹਾਓ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਏ ਕਰੀ ਸੀ ਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੇ ਪਤਾਰ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੇ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਦਮ ਸੁਮਾਵੇ, ਰਹਾਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੇਵ ਕੜੇ ਤਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ, ਤੇ ਸਾਇਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਰਹਾਓ ਸੋ ਰੜੇਤਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ,

बैराग ब्रगत पयो हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोए हर बिन रह न जाई। राग शरण जगदीश्वर प्यारे मोए श्रद्धा पूर हर गुसाई, जन नानक कह मन अंध होत है हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिन पौ बोध दिखाया। भाई मीत कुटंब देख विवादे हम आई बस गद गुर प्रसाद, ऐसा देख विमोत होए साधक सिद्ध सुरदेव मनुख, बिन साधु सब त्रोहन त्रोह रखाओ। एक फिरे उदासी तिन काम में आपे, एक संचे गिरगी तिन होए न आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुर पावे। तब करते तपसी फूलाए पंडित मोहे लोभ सुभाए, त्रैगुण मोहे मोया आकाश हम सतगुरु राखे देकर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कह सो कार कुमावा जन नानक गुरमुख नेड़ न आवा। आसा महला पंजवा ससु ते वर कीनी वाख, दे जिठानी मोई दू संताप करके जठेरे की चूकी कान, ते रख्या कीनी सुड़ सुजान। सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे सतगुर मोको हर नाम दिवाया। रहाओ प्रथमे त्यागी हो मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत सुमाने, तुरिया गुण मिल साध बिशाने। सहज कुबा में आसन बाध्या ज्योत स्वरूप अनाह दवाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार प्रेस राती तन सुहागण नार। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कुमावे तो उतरे पार। जन्म ना मरे ना आवे ना जाए, हर सेती ओ रे सुमाए। आसा महला पंजवा ने भगती सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार जित करे वसे सुग्र सोभावंत। गुरमुख पाई किने विरले जनता, सो करणी कामन गुरमिल हम पाई, जय काय प्रथाए सुहाई। रहाओ जिचिर वसी पिता के साथ, किचिर कंत वो फिरे उदास। कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरयाणी कर मैं ता सर्व सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुड स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी। सगल संतोखी देर जेठानी, सब परवारे माघे श्रेष्ठ। मती देवी देवर ज्येष्ठ, तन सो गृह जिस प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विखाए। आसा महला पंजवा मता करो सो पकन ना देई, सील संजम के निकट खलोई। पेश करे बहु रूप दिखावे, गृह बसन ना देई वख वख परमावे। घर की नायक हर वास न देवे, जतन करो उरझाए परेवे। रहाओ तुरकी पेजी आई अमर, नौ खण जीते सब थान सनंतर। तड़ तीर्थ न छोड़े योग सन्यास, पढ़ थके सिमरत वेद अभ्यास। जय बैसो तय नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश। होची शरण पया रहन न पाई, कहो मीता हौ कह पै जाई। सुन उपदेश सदगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोय मंत्र दरड़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्र मिलो नानक पय अचिंता। कर मेरा ए नायक हमारी, ए अमर

को आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मन लबटानी सहा व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ सहे पठाया सहे पास अमोल रतन अमूला रास विट सुभा।

बिगड़ रूप मन में अवमान सोनी स्वरूप सुजान बचकन अत गर्भ मोहि फाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसाल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे भोगे भोग आचार करे शोभा में लोग चोआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन

मिल सतगुर धन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई, पाए न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई, हरहाओ टोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रह अघाय, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस धन ते सब जग बरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लके का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा महला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाओ दिनते सरपर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हुए निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे सगल

साथ रब रहया प्रभ सबके साथ पूरा गोर पूरी बंत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवा गुर के शब्द बनावो इहो मन गुर कर दर्शन संचो हर तन।

पूरे अंध भया सा मिटे रसूरे हरहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा बाशत नाही सो बेला आई बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई ठंडी ताती मिट्टी खाई ओ ना बाला बूढ़ा पाई हरहाओ नानक दास सास सरणाई गुर प्रसाद को पार पराई आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावे एलबक जाहे सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुन गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिए रुढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुस रोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरी, नाम न सुई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत् योग न पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतर जामी सब के जाने, उसते कहां छुपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद राखे, मन में एक अंकारे, तेरा जान निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोध अपना, पाछे अवर री जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा। अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिगसाना रे, आसा महला पंजवा। बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरद समारिया, होए किरपाल माध पित न्याई, बारग ज्यो प्रद पारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिये महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजे न जाए ही पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्रपय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा। जा तू साहेब ता पौ केहा, हौ तुद बिन के सा लाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दू जा नाही, बाबा बिग देखया संसार, रख्या करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार रहाओ। जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाइए, विण नावे सज बौराया, नाम मिले सुख पाइये, क्या कहिए इस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस, जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई, एत ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ, आसा महला पंजवा। अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जने पियो, जन्म जन्म टूके पै पारे, दुर्त बिनासियो परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर, मंत्र मेरा ठार थियो,
रहाओ, तुमरी कृपा ते पयो साध संग, यो काय तुम आप कियो, दृढ़ कर चरण गए प्रा तुमरे, है जे विखिया पई कियो, सुखन दान नाम प्रा तुमरा, यो अविनाशी मंत्र लियो, हर कृपा में सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो, तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेर लियो, तन सो कलयुग सा संकीर्तन गाइए, नानक नाम आधार हीओ, आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किशुआ, अवर के जाने ज्ञाना, पूर चूक अपना बार्ग बक्सया, पार ब्रह्म भगवाना, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया, हर अमृत मुख नाम दिया, हरहाओ, अनक पाप मेरे पर हरया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोर ते बहा पकर गुर काढ लिए, निरपो पए सगल पो मिटया, राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे, कारज सगल सवारे, गुण निदान साहेब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला, आसा महला पंजवा, तू विसरे ता सब को लागू, कीत आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूज, साचे अलख अपेवा।

अवन आवत काम संत प्रसाद ताको जप ये नाम साध संग मन सोवत जागे तप्रव नानक मीठे लागे आसा महला पंजवा एको एकी न निहारो सदा सदा हर नाम समारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रसाद साध के संगे हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ सगल समगरी जाके सूद परोई कड़कड़ अंतर रव्या सोई ओबद परलो खिन में करता आप लेप निर्गुण रहता करण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक।

पूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सम्हारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंद रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम मखाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, ना प्रभु का मन अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब तिसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, आत निर्मल दास की जुगता, हरहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहां सुख आगे

नरक सुर्ग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी। और पया बौर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी। प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारे खिसर गयो तूम पर डारे। साध मुहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे। साध संग मिटे परम अंधारे।

तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, हरहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुँच न सके जन तेरे कहो, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम तेरे मैं दीजे। आसा महला पंजवा, मन तृप्तानो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी, जाके गृह सब किस गए पूर्ण, हो फेटिया निरभय तनी, हरहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिड़गी भूख महा विकराल, ठाकुर अपने की नी दात, जलन बुझी मन होई सांत, मिट गई पाल मन सह समाना, नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा, ठाकुर स्यो जा की बने आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, पशु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत दिलशत देवन को, हरहाओ जाका तनी अगम गुसाई, मानुख की को केत चलाई, जाकी सेवा दस अष्ट सिधाई, पालक दिष्ट ताकीला गोपाई, जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आसा महला पंजवा, जो मैं अपना सदगुर त्याया, तब मेरे मन मां सुख पाया, मिट गई गणत बनास्यो संसा, नाम

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट भय रे जाका अपग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े हर साल गरा।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ बैठ गौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमें पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब विसरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संतृप्ता से हर घर त्याय हर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कालमा दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन वस्या हर का नाम नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली भांत सब सह समाही, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सच्चा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवा जिसनु तू अस्थिर कर मान है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्र गृह सगल समगरी सामित्या असनाहा रे मन क्या करे है हा हा रिट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन ले लाहा रहाओ जैसे वस्त्र दे ओढ़ाने दिन दो चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत कोर को आहा जैसे अंब कुंड कर राख्यो परत सिंध गल जाहा आवग आग्या पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा रे मन लेखे चाले लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवा अबुट बाते पई सिदरी दूत दुट सजनई अंधकार में रतन प्रगासियो मलीन बुद्ध खशनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर ना फल पाए सदगुर मिलई हरहाओ मुए किरपन को कोई न जानत सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कई न पावत हुन सगल चरण सेवई आड़ आड़ को फिरत टूंढते मन सगल तिशन बुझ गई एक बोल भी खपतो नाही साल संगत सीत लई एक जी गुण कम वखाने आगम आगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेगताया सत वखर तू किन्ने नाही पापी बदा रे नाया सदगुर तेरी आसाया बदल पावन तेरो नाम पार ब्रह्म मैं एहा ओटाया रहाओ गंदन वैन सुने उरझावे नाम लयत अलकाया निंद चिंद को बोध उमायो बुझी उलटाया पर तान पर तान परती निंदा अखाद खाए हरकाया साज धर्म से रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरनाया नानक आए शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाए मोह माया कर बांधे जय जानो सो चीत न आवे अंग बुद्ध पै आंधे मन बैरागी क्यों न आराधे ताज कोठरी माहे तू बसता संग सगल दिखे की व्यधे रखाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिखावे पलखिन शीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ तन दुर्गा दे काम क्रोध अर लोभ मोह ए इंदी रस लपटा दे दीप वारी पुख बिधाते बौर बौर जन मादे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुरमिल सब सुख लादे कहो नानक जिन रैन तिहावो मार काढ़ी सगल उपादे त्यो जप्यो पाई पुरख बिधाते पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुख पावे करी मोह तरंग माने फिर बौर बौर पछतावे अंधे चेत हर घर आया तेरा सोधन नेड़े आया रहाओ पलक दृट देख पूलो आक नीम को तुमर जैसा संग विशीर सिंहाय रे कैसो ही यो पर गृह बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाए तिन ही सो संगी सजन स्यों बैराना सगल संसार

निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। रहाओ तिस सेवक के हो बलिहारी, जो अपने प्रभावे तिस की सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसने आवे। आसा कर ग्यारवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ पे दिखावे बहु विद, जैसा है ओ तै सारे, अनक जोन प्रम्यो प्रम पीतर, सुखे नाही परवे सारे। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीता रे, सा संग मिल हर गुण गाए, त्यो जन्म पदार्थ जी तारे। रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कौन बे तरिये रे, घूमन घेर अगा गाकरी, गुर शब्दी पार उतरिये रे। खोजत खोजत खोज बिचार्यो, तत नानक त्यो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोल, मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे, गुर प्रसाद मेरे मन वसया, जो मांगो सो पावो रे, नाम रंग त्यो मन त्रिवताना, बौर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिन से गावो रे, खिन में थाप्यो थापन हर, इसते तुझे डरावो रे। रहाओ जब देखो प्रभु अपना स्वामी, तो अवरे चीत न पावो रे, नानक दास प्रभ आप पै राया, प्रम पौ मेट लखावो रे। आसा महला पंजवा चार वर्ण, चौहा के मर्दन खड़ दर्शन कर तली रे, सुंदर सुगर स्वरूप सियाने, पंचो ही मुए शली रे, जिन मिर मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कली रे। रहाओ वड़ी कोम पस पागे नाही, मोहकम फौज हठली रे, कहो नानक तिन जन निर्दलया, सा संगत के चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम, आन सुल रस पीकी रे। रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते, अवर ना किश लाई की रे, भिखारी निरारी अपारी सहजारी, साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमख न मन ते टारी रे। रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे, खिन राम गुर गम हर दम नह जम, हर कंठ नानक उर हारी रे। आसा महला पंजवा निकी सा संगानी, रहाओ पैर मूर्त पल गावत गावत, गोविंद गोविंद वखानी, चालत बैसत सोवत हर जस, मंत्र चरण खटानी, हौ हौरो तू ठाकुर गौरो, नानक सरन पछानी। राग आसा महला पंजवा कार बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्याग सगल सियाणपा पज पार ब्रह्म निरंकार, एक साते नाम बाजो सगल दिशे सार, सो प्रव जानिए सत्संग, गुर प्रसादी बूझिए एक हर के रंग। रहाओ सरन समरथ एक केरी, दूजा ना ही ठाओ, महा फौज लंघिए सदा हर गुण गाओ, जन्म मरने वारिये दुख ना जंपर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रसोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभु के, दीगे सब रस भोग, दीन बंद बजी दाता सरण राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे, एक सिउ निमलाओ। रहाओ वेद शास्त्र जन ते आवे, तरण को संसार।

हमरे वस किश नाग, ज्यों ज्यों रख त्यों त्यों रहना, एरा दिया खाग, जन्म जन्म के किल विख कट, मजन हर जन तूर, पाए भगत परम पौ नस, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, आगम अगोचर दर्श तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रतारी, सदगुर बख्शिया हर नाम, काल युग उधारिया गुरदेव, माल मूत मूर जे मुगद होते, सब लगे तेरी सेव रखाओ, तू आप करता सब सृट तरता, समय रहा सुमाए, धर्म राजा बिस्माद होआ, सब पई पैरी आए, साजुग त्रेता द्वापर पणिए, काल युग ऊतमो जुगा माघे, अहे कर करे सो अहे कर पाए, कोई ना पकड़िए किसे थाए, हर जियो सोई करे,

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुसत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म न लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ते पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ इत ऊत कट कट कट कट।

आया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बिधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे औ कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम सिंह लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपत बाजी हार मुका पछतायो मन फोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंत्र रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए।